0: संगीत की सबसे बड़ी प्रेरणा, इंस्पिरेशन। मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों का जन्म दिल से होता है और दोनों की किस्मत भी दिल के कहने पर निर्भर है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ, जाओ और जाकर उससे कह दो। यह मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना, सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुनो और जो दिल कहे उसे कर दो।
1: मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ें?